तत्वा प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूव्रत भान दस चार चार निधान।

तिस्तु ही न दस्तु ही ब्रिछस्तु ही पतस्तु ही चितस्तु ही उधस्तु ही भजस्तु वं रटस्तु वं ठटस्तु।

त्वा प्रसाद कबित खूकमल हरि गज गद हा विभूत दारी कि दुआ मसान बास करे ही करत है खूकमट बासी लगे डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन साध ही मरत है बिंद के सथैयता हीज की बडैया दे दबंदरा सदीव पाए नांगे फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे कह तरत है भूत बन चारि चित छौना सब दूधाधारी पौन के आहारी सोभ जंग जानियत है त्रिण के फसैया धन लोभ के तजैया ते तगौवन के जैया प्रिक भैया मानियत है नभ के उडैया ताहे पंछ की बडैया दे दब गुलाब डाल प्रिक ध्यानी ठानियत है जेते बड ज्ञानी दिनो जानी पै बखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कहे नभ के उड़ैया सोचे रैया कह बखानी है फल के भजैया ताहे बांदरी गजैया कहे आदिश फिरैया ते तो भूत कह पछानी है जल के तरैया को वंगे ऋषि कहत जग आग के भजैया सोचा कोर सम मानिए सूरज सिवैया ताहे कौल की बटाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाब कौल जेह ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब देन चारी लिखी के स नाम के महंत लहियत है माधव बवर ओ अटेर को कन्हैया नाम कंस को बधैया ज मदूत कहियत है मूड रूड पीट तन गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल वैरी साल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है जोगी जड्डा थारी सती सच बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठांड न बहत है मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग तेव नेत नेत कह कहत है नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करे ही करत है चंद्रमात शीतल न सुरते तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिर आई फिरत है एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है ब्रह्मार विषण के तेद हो पुराण के ते सिमृत समूहन के होए होए बिताए हैं मुनदी मदार के ते अश्वनि कुमार के ते अंसावतार के ते काल बस भय है पीरे ओ पिकावर के ते गण न परत ते भूमि ही तवि के फिर भूमि ही मिलाए है जोगि जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई घोसलो चलत है बड़े बड़े राजन के दापत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है मान से महीब ओ दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है दारा से दिल्ली सरद्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूमांत भूम में मिलत है सिज दे करे अनेक तोप चीक पट फेस पोसती अनेक दा निवावत है शीस को कहा भयो मल जो पे काटत अनेक डंड सो दोनो डंडोत अस टांग अति तीस को कहा भयो रुग जो पे डार रहे उर्द मुख मन तेना मुंड निहरायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीन एक भावना विहीन कसे पावे जगदीस को शीस पटकत जाके कान में खजूरा धस मुंड छटकत मित्र पुत्र हूँ के शोक सौ आंख को चरैय फल फूल को भचैय सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भूक सौ कहा भयो भेड़ जो घसत शीस बिछन सो माटी को भचैय बोल पूछ लीजे जो कुसौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ नाचो ही करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करो ही करत है एक पाइन ठांडे सदा बन में रहत वृच फूक फूक पाँ भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चीत देश देश बिचरत है ज्ञान के विहीन महादान में न हुजलीन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया बरागी बने कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई
कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई। पंच बार की तर पुकार पर शीत काल कुंजर उगदहा अनेक ता पुकार ही कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टाक उठारन सो मार ही कहाँ भयो फांसी डर बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाई अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के गीत जो पे पायत अजाप देव बोधना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है आग में चरित गत रांड की परत कर पताल के बासी की उजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जो कि भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान वो हिंदू तुरक को राव जी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो करता करीम सुविराज कर रहीम उई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान वो एक ही किसेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो देहो राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक बयाने को भ्रमाव है देवता देव जश कंदरव तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है। एक नयन एक कान एक देह एक वान खाग बाद आतस हो आप को रलाव है अल्लाह अफेक सोई पुराण हो कुरान ओई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है। जैसे एक आग दे कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे जैसे एक धूर दे अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे जैसे विश्वरूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत फच केते अच वच हो सपच उड़ जाहेंगे केते नभ बीज अच पच को करेंगे भज केते प्रत्यच हो पचाए खाए जाहेंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के कौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुगत फिरत केते रोवत मरत केते जल में डूबत केते आग में जरत है केते गंग बासी केते मदीना मक्का निवासी केते उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत केते भूम में गड़त केते सुआ पे चढ़त केते दुख को भरत है ज्ञान में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे चोजार बूझ हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मंडली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तप

कह कहावे कहा कह बखानो कह मनावे। न रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं द्वेखंग फेखंग जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे। परेयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशीय छेदं गच्छेयाद अद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे। किते ग्रसन से कीट गोटे उपाय सारे।

विभूतेन जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधय खंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहं न गेहं सनेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सभूते भविखे भवाने चित्रे नारायं नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभं भूतं अपेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं गजोनी अक्षयाद अद्वय अजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भय निर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग बालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदेवं सदा सिद्धविर्धं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापे अयुक्तं गच्छयात् अविक्ते यथापे विभुक्तं गच्छयात् अक्षय स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न चाकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मन्त्रे नमो एक तन्त्रे नमो एक तन्त्रे न धर्मं न भर्मं न सर्मं न साके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेज के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध गाथे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्वभूपं कहूं नेह गृहं कहूं देह दुखं कहूं औषधि रोग के शोक सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैद वाणी कहूं जक्ष गंधर्व के नर कहानी कहूं राजसी सादकी तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जच विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट के पृष्ठ के ऋष पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम वाणी कहूं कोक की काव्य कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र वाणी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव्य रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ पुराण के गीत गावे कहूं शुद्ध सिखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्धावस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रितं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं यंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं वीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागबानी कहूं गारुड गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूं वीर विद्या अभूतं प्रभा हो कहूं छैल छाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजं धीराजाधिकारी नमो नाथ भूरे सदा सिद्ध दाता छेदी अक्षयाद अद्वय विधाता न त्रस्तं न ग्रस्तं।

जय सतर मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्राद नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय ने गेह नहीं प्योतबान जय जात पात नहीं सतर मित्र जय ने गेह नहीं जहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं वरम भेख जय करम वरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं वर्ग व्याध जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगज जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो नांग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब जय अलख रूप आसन डोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत घाम वरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध बाह देसन भ्रमंत कई उर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद कई गोक काव कथत कतेब कई अग्न होत्र कई पौन हार कई कर्त कोट मृत को हार कई कर्त साक पत्र भक्ष नई तद

कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूं वेद रीत जग याद करम कहूं अग्न होत्र कहूं तीर्थ धर्म। कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या बढ़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नैकता सपा यत्न पार। कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदपता सपा यत्न पार। कहूं राज रीत कहूं जोग धर्म कई सिमृत शास्त्रत उचरत सो करम न्योली याद करम कहूं हस्त दान कहूं अश्वमेध मुख को बखान। कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं वृद्ध चार कहूं करत चक्ष गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान। कहूं पितृ करम कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं करत शास्त्र सिमृत उचार कहीं भजत एक पग निराधार। कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देश अनुदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत ऊर्ध लटकंत जाप। कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदप तास पायतनांत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप दिष्ट देखे मुरार। बिन भगत सगत नहीं परत पान भो करत होमर जग दाम बिन एक नाम एक चित्त लीन भो कुटो सर्व धर्मा विहीन। त्व प्रसाद तोटक छंद जय जम्पह जुगण जूह जुवंग भय कंपह मेर पयाल भुवंग तप तापद सर्प जलेर धलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग। अनखेत स्वरूप भेद भयंगन खंड अभूत छेद छयंगन काल अपाल दयाल स्वंग जय ठट्यंग मेर आकाश भुवंग। अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचयंग देव देव वरंग सबकीनी दीन जमीन जमा जय रचयंग सर्व मकीन मकान। जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न सुख सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुयंग जय खेद न भेद न छेद छयंग। जय जात न पात न मात पितंग जय रचयंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग बणंग जय द्वैख न दाग न दोख गणंग। जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नवखंड सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो। श्रेय सिंधु रूपिंद नगिंद नगंग श्रेय जक्ष गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग। कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंड से तज उद भुजंग की ये देव देव सराद वितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग। प्रभु जातन पातन ज्योति जुतंग जय तातन मातन भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जम्प है किन्नर जाच जुवंग। नर नारन पुंसक जाह किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांत गणंग भवभूत भवेख भवान तुअंग। जय अंडज से तज जेर रजंग रज भूम आकाश पतार जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली। हो मेरा आकाश निवास चितंग रज रोज एकादश चंद्र वृतंग दुध चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई। जय खंड अखंड प्रचंड किए जय चतुर उपाय छपाए दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे। अंधूत भूत छूत मतंगन गाद प्याद नाद गतंगन खेद अभेद अचेतन रंग जय चार चतुर्दिश चक्र फिरंग। जय राग न रंग न रेख रुगंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग। गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग। अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जम्पद वेद पुराण स्वभाव जय वेद कतेब अनंत कहे जय भूत भूत न भेद लह। जय वेद पुराण कतेब जप सुत सिंध अधो मुख ताप तप कई कल्पन लो तप ताप कर नई नैक कृपा नित पान पर। जय होकर धरम सब है तह एक चित्त कृपा निध को जप है त्यो या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है। एक नाम बिना नहीं कोट प्रति इम वेद उचार दसार सुति जो वारस के चस के रस है त्यो भूल न काल फंदा फस है। त्व
ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਅਗੰਜ ਆਦ ਦੇਵ ਹੈ ਅਭੰਜ ਭੰਜ ਜਾਨੀਆ ਭੂਤ ਭੂਤ ਹੈ ਸਦਾ ਗੰਜ ਗੰਜ ਮਾਨੀਐ ਅਦੇਵ ਦੇਵ ਹੈ ਸਦਾ ਭੇਵ ਭੇਵ ਨਾਥ ਹੈ ਸਮਸ ਸਿੱਧ ਬ੍ਰਿਧ ਦਾ ਸਦੀਵ ਸਰਬਸਾਤ ਹੈ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਨਾਥ ਹੈ ਅਭੰਜ ਭੰਜ ਹੈ ਸਦਾ ਗੰਜ ਗੰਜ ਗੰਜ ਹੈ ਸਦੀਵ ਸਿੱਧ ਬ੍ਰਿਧ ਦਾ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਛਿਜ ਤੇਜ ਮਾਨੀਐ ਸਦੀਵ ਸਿੱਧ ਸੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਤਰ ਜਾਨੀਐ ਨਰਾਗ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ ਨਰੋਗ ਰਾਗ ਰੇਖ ਹੈ ਅਦੋ ਗਦਾ ਗਦਕ ਹੈ ਅਭੂਤ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਖ ਹੈ ਨ ਤਾਤ ਮਾਤ ਜਾਤ ਹੈ ਨ ਪਾਤ ਚਿਹਨ ਵਰਣ ਹੈ ਅਦੇਖ ਸੇਖ ਵੇਖ ਹੈ ਸਦੀਵ ਵਿਸੁ ਭਰਨ ਹੈ ਵਿਸਵੰਬਰ ਵਿਸਨਾਥ ਹੈ ਵਿਸੇਕ ਵਿਸਵ ਭਰਨ ਹੈ ਜਿਮੀ ਜਮਾਨ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਦੀਵ ਕਰਮ ਭਰਮ ਹੈ ਅਦਵੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਨਾਥ ਜਾਨੀਏ ਸਦੀਵ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੈਂ ਵਿਸੇਖ ਅਨ ਮਾਨੀਏ ਨ ਜੰਤਰ ਮੈਂ ਨ ਤੰਤਰ ਮੈਂ ਨ ਮੰਤਰ ਬਸ ਆਵਈ ਪੁਰਾਨ ਓ ਕੁਰਾਨ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕੈ ਬਤਾਵਈ ਨ ਕਰਮ ਮੈਂ ਨ ਧਰਮ ਮੈਂ ਨ ਭਰਮ ਮੈਂ ਬਤਾਈਐ ਗੰਜ ਆਦਿ ਦੇਵ ਹੈ ਕਹੋ ਸੁ ਕੈ ਸਪਾਈਐ ਜਿਮੀ ਜਮਾਨ ਕੈ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ ਨ ਘਾਟ ਹੈ ਨ ਬਾਡ ਹੈ ਨ ਘਾਟ ਬਾਡ ਹੋਤ ਹੈ ਨਹਾਨ ਹੈ ਨ ਬਾਨ ਹੈ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਜਾਨੀਏ ਮਕੀਨ ਓ ਮਕਾਨ ਅਪ੍ਰਮਾਨ ਤੇਜ ਮਾਨੀਏ ਨ ਦੇਹ ਹੈ ਨ ਗੇਹ ਹੈ ਨ ਜਾਤ ਹੈ ਨ ਪਾਤ ਹੈ ਨ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨ ਤਾਤ

न सिंह है, न स्याल है, न राव है, न रंग है, न मान है, न मौत है, न साक है, न संग है, न जच है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साव है, न साह को कुमार है, न नेह है, न गेह है, न देह को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेख है, न कर्म है, न धर्म है, जन्म है, अभेक है, न तात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न भूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अबार है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साध है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमाथ है, न सीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेख है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, बलिया रूप राग रंग है, न द्वैख है, न भेख है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चिहन वर्ण है, बेअंत है, अनंत तेज जानिए, भूम अभिज है, सदा छिज तेज मानिए, न आध है, न व्याध है, अगाध रूप लेखिए, अदोग है, अदाग है, अच्छे प्रताप देखिए, न कर्म है, न फरम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को ललाव है, न छे छल है, न छिद्र है, न छिद्र को

है ना आद है ना गाद है ना ब्याद को विचार है, न रंग राग रूप है न रूप रेख रार है, न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि ग्रंत सेव है, सदा से दसपति तपस्वती वनस्पति जपस सदा। अगस्त आदि जे बड़े तपस तपि विशेखिय, बेअंत बेअंत बेअंत को ग्रंत पाठ देखिए। अगाध आदि देव की अनाध बात मानिए, न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सने जानिए। सदीव सर्व लोग के कृपाल ख्याल में रहे, तुरंत द्रोह देह के अनंत फांद सोत है।

हस्त कीड़ विखै बसै सब ठौर मैं निरधार। जात पात ना तात जागो मंत्र मात ना मित्र सर्व ठौर विखै रम्यो जय चक्र चिहन न चित्र। आद देव उदार मूर्त गाथ अनंत आद अंत न जानिए अभिखात देव दुरंत। देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेब सन कौसन केश नंदन पाव ही न सेब। जछ कि नर मछ मानस मुर्ग उर्ग पार नेत नेत पुकार ही शिव सकर ओ मुख चार। सर्व सपद बतार गए दर

सर्व ठावर रहयो विराजधिराज राज प्रवीन। जच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे, वैसन के बिखे विराज सूत्र भी वह नाहे। गुड़ गौड़ न भीत फीकर ब्रह्म शेख स्वरूप, रात दिवस न मध्य उर्द न भूम आकाश अनूप। जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन, तीर्थ जातरण देव पूजा गोर के न अधीन। सर्व समत अवतार के तर जानी है जो जिह ज्योत, शेष नाम सहंस वर्ण है नेत पूरण होत। सोत सोत हटे सफ़ सुर विरोध दानव सरब, गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर करब। पढ़त पढ़त पढ़थके महाकव गढ़त गाढ़ अनंत, हार हार कहियो सहु वीर नाम नाम दुरंत। वेद भेद न पायो

सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निजभाम, सर्व भोक्ता सर्व

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देव खंड भूम का जले थले मह जबत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आद देवा पासरी वद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म

कहाँ रंग राजा कवन हरग शोक है गवन को रोगी रागी कवन कहो तत्म है तवन दोहरा। कवन सृष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा। कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश कहाँ चेतन की चेष्टा।

दुर्जल दंडन असुर बिहंडन दुष्ट निकंदन आदि वृते जसरासुर मारण पति दो धारण नरक निवारण गूढ़ गति अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंड उदंडे अलख मते जय जय हो सी मासुर मर्दन रंभ कबर्दन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते जंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विधुंसन महक मथे दान प्रहारण नरक निवारण अधम उदारण ऊर्ध अधे जय जय हो सी मासुर मर्दन रंभ कबर्दन आदि वृते डावरूडवंके बबरबवंके भुजा फरंके तेज बरंग लंकुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमोर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके भूखण तमके अतसे झमके फुंक फलंग जय जय हो सीमा खासुर मर्दन रम कबर्दन दैद जिणंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खांडे अखंडन खून खिते दामनी दमंकण धुजा फरंकण फणे फुंकारण ज्योत जिते सरधार विवरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो सी मै खासुर मर्दन भूमा कासल ऊर्ध अथे दामनी प्रहासन सुछभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आजन ज्योति ब्रह्माचन हृदय नराचन धर्म प्रते श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सी मै खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघोक निवारण दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ उवारण शोध मते फणिय रहुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहती सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलं जय जय हो सी मै खासुर मर्दन भूम आकाश पताल जलं चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रव मथे दाढ़ वी व्रतंते जोग जयंते मरुज मत

भुं गुरु कमंकण सस्र झमंकण फण यरफुंकारण धरम दुजे अष्टाट प्रहासन सृष्ट निवासन दुष्ट प्रणासन चक्रगते केसरी प्रवाह सदसन्ना हे अगमथा हे एक वृते जय जय हुसी मैखा सुर मर्दन आदि कुमार गाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन पृष्ठ विनाशन मृत मथे कावरु कुमार अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकिणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहन वितल तले जय जय हुसी सब ठौर निवासन बाय बताल कासन ले संकटी निवारण अधम उधारण तेज प्रकरखण दुंद तवे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद गाद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होसी शास्त्र प्रकरखण आद नील गाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नर्क निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हरनंके आदतंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोच विसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से सुभ्र सुभा से दुष्ट कसे चंचला प्रहंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी

सुरंको किल सुन लाजे किल बिग भाजे सुखूब राजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जे मंत्र रिज्जे सवै न भज्जे रूह रणंग जय जय हो सीम खा सुर मर्दन चंड चक्रतन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोस रोधन क्रूर वृते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुन संजग विधुंसन सुध मते जाल पजयंती शत्रु मथंती दुष्ट

गते ब्रिडलाज बिहंडन चुर दंडन तेज प्रचंडन आद प्रते सुर नर प्रतिपारण पते दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सी मखा सुर मर्दन विश्व विदुन संशिष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तननासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान वी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रथर खंड पितल तले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो से मखासुर मर्दन आद अनाद गाध प्रति दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत व्रत क्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रता है अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद

डुक डुकी दबंगे भागव भंगे भुजा फरंगे शुद्ध गते जय जय हो सिवै खास मर्दनाद जुगाद अनाद मते चछरा सुरमारण नरक निवारण पत दो धारण एक फटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंड।

दो कहर त्रदाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भ्रम, जय रंग रूप नहीं एक धर्म, जय शत्रु मित्र दो एक सार, अच्छा स्वरूप अविचल पार। जानी न जाय जय रूप रेख, कहे बास तास कहे कौन भे, कहे नाम तास है कवन जात, जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप, जय जक्र चिहन नहीं रंग रूप, जय खेद भेद नहीं कर्म काल, सब जीव जंत के करत पाल। ऊर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप, बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप, जय रूप रेख नहीं रंग राग, अंशिज तेज अनभिज दाग। जल थल महीप बंतन दुरंत, जय नेत नेत निसिदिन उचरंत, पायो न जाय जय पैर पार, दीनान दुख तहता उदार। कई कोट इंद्र जय पान हार, कई कोट रुद्र जुगिया द्वार, कई वेद व्यास ब्रह्मानंत, जय नेत नेत निसिदिन उचरंत। त्व प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे, नित संत उपार गनी मन गारे, पछ पशु नक नाक नराधिप, सर्व समय सबको व्रत पारे। पोखत है जल मै थल मै पल मै, कल के नहीं करम बिचारे, दीन दयाल दयानिद दोखन देखत है पर देत नहारे। दाहत है दुख दुखन को दल दुजन के, पल मै दल डारे, खंड अखंड प्रचंड वहारन, पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे। पार न पाए सके पदमावत भेद कते, व भेद उचारे, रोज ही राज बिलोकत राजक, रोक रुहान की रोज नटारे। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख, भवान बनाए, देव देव खपे अहम एवना, भेव लख्यो भ्रम शिव भरमाए। वेद पुराण कतेव कुरान, वेद पुराण कतेव कुरान, हसेव थके कर हाथ न आए, पूर्ण प्रेम प्रभाव, बिना पद स्यों किन श्री।

दीन दयाल दयाकर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सभोधन नेह विरक्त के अक्षय है। जान को दे दे जान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है। काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्री पद्मापत है। रोगंते और सोगंते जल जोगंते बो भांत बचावे। सत्र अनेक चलावत गाव तउ तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दय कर पाप समूह न फेटन पावे। और की बात कहा कह दो सो सो पेट ही के बड़ बीच बचावे। जस भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जस भुजंग सब है सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहू को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हो मिल गायो। वेद कतेव न वेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमावत सिद्ध सनाद सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन मै जय को मितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब है बचहारे। भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाध अपेख अद्वेख जप्यो तिन ही गुलतारे। तीर्थ कूट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिर कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कूट करे अष्टांग धरे बहु न्यास करे मुख कारे। दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रण के साल है दान के देवैया महामान के बढ़ैया वसान के देवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार बावे हिंगुला ही माल ध्यावे गोर कर देजी गुण गावे तेरे नाम है जोग जोग साधे पौन साधना की तेक बांधे अरब के अरबी आराधे तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जाने पछम के पछमी पछान निज काम है मरहटा मंगे दे तेरे मन सो तपस्या कर दृढ़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है रोह के रोहले माघ देश के मंगेर वीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है गोखा गुण गावे चिन मचीन के शीस ने आवे ते बते दे आए दुख देह के दलत है जिने तोहे दयाओ तिने पूर्ण प्रताप वायो सर्व धन धाम फल फूल सफलत है देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साध दीन कहियत है पाइये न पार दे पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचाता है चीटी की जिंगार पहले ही सुनियत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्ण अवतार किते राम कहियत है किते ससरासी किते सूरज प्रकाश किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है किते महादीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है करते हैं विचार पैन पूर्ण को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है पूर्ण अवतार निराधार है न पारवार पाई न पार पे अपार के बखानी है।

है साधन को रचक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है कि बुद्ध को विभूत है कि क्रोध को भूत है कि अच्छय अविनाशी है। काम को कुनिंदा है कि खूबी को दिहंदा है। गनी मन गरिंदा है कि तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के शत्रुन के सार है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता की बासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मुंह होने को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ का घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है। अदेवन को देव है के सिद्धता को सर है। जान को बचैया है मान को दिवैया है। जमजाल को कटैया है कि कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है। महीपन को मंड है कि स्त्री है न नर है। विश्व को भरण है कि आपदा को हरण है कि सुख को करण है कि तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पारा वार हूँ को पार जाको की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमाल गावे हा बसी हल पिथावे पूर बिना पार पावे आसत अनास है। देवन को देव महादेव हूँ के देव है। निरंजन अभेवनाद अद्व अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ के जोग है धरैया द्रोम छाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छब काल इंद्री के कूल के। हंसनी से सिहारो महीरा सी हो सैना बाद गंगा कैसी धार जली सातों से दरूल के। पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद नी के रही झूल के। चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी बूर सीसा सी सुरंगाबाद नी के सोहियत है। हिमा सी हिमालय हर हार सी हलबा नेर हंस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंग धार बकान सी बिरंदवाद कीरत तिहार की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी के तुरंगी मकरान मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है। बकरी कंधारी गोर गखरी गिरदजाचारी बौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप कराम कमाऊ सर्व ठौर मैं विराज जहाँ जहाँ जाइयत है। पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र देता पिनाथ कीरत तिहारी को न पार पाइयत है।

प्राण सखाई। हर कीरत हमरी रह रास रहाव, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलै तृपता सह, मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, दृग जीवै दृग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुरमस्तक लखया लखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया।

अच्युत वह उदम जहाँ आहर हर जियो परिया सैल पथर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाव जन पिता लोक सुत बंता कोय न किसकी धरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भव करिया ऊडे ऊड आवे सैकूसा तिस पाछे बछरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया

पैरन को आज संगरिये पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिये मरन काल का त्रास नवरिये पूजो सदा हमारे पच्छा श्री असधुज जूं करियो हो रच्छा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा पप धरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विषण प्रगासा सकल काल का किया तमासा देवन

दुष्ट दोख ते लेहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सब राता। केलविक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अजोजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांशद फल पावे सोई, दोख

चौपई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कहे जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ।

कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याज सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुखदावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लौलिहु सुधारा दोहरा।

कह करोड़ी चलत न अंत। भैव सुध बुध सुनाद भैव च आडा ने आकाश, भैव जोध महाबल सूर, भैव च आवे जावे पूर। सगलिया पाव लिखिया सिर लेख, नानक निर्भव निरंकार सच एक।

भले हार एक व्रत वसया तेरा अंत न जाए लख्या रहा जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सुवाले हो।